गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकर भवन्तु सूर्य सौर मतिन्दुरुश्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गला सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्र सुखं शंसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्यो नित्यं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलग्रह नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।